जी बिल्कुल प्रोग्राम की वही खबर है कि ठीक तर एक बजे पर नहीं ये बजे पर रहता प्रोग्राम दें तो उस बजे प्रोग्राम की शिरकत कवली से कॉल कवली से 09

हाजी बिल्कुल घर में छम दई आओ बिल्कुल सुख पे चारे सी बीजी भी यानी कि बिल्कुल डेढ़ दस का सुन छवि बीजी भी चारे की बीजी भी डेढ़ बदसी छ बिल्कुल वी फ्री और दे छम माने वेले गवली वे रेडियो एनी रेडियो अमन बेले गवली भी आओ वीनी भाई बीचे 12 बजे बजे सो कर दी मी अच्छा बोल खुदा खबर आप किचे द पीर पोरा जाओ पीर पर तो सब बिल्कुल प्रोग्राम पेश को एना मैं बिल्कुल तो सब प्रोग्राम पेश को हो चुके नन प्रोग्राम दे पर अवेलेबल ना दे नो बिल्कुल तो से बेद मत के हाजिर छन बिल्कुल कॉल है कवले छे मैसेज कवले छे 0927291292 बने और दिन लो मैसेज 8531

अच्छा जी सही था, ठीक से बस दुआ गया नहीं विकेट अच्छा डेर मन ना लो या खास से थैंक यू और यही कहना चाहिए सलाम तारिक भाई प्रोग्राम डेर खान को हलीमा रोशनी रोशनी खान सॉरी रोशी खान फातिमा वजीर सनई था सलाम ए फातिमा रदान ठीक सो डेरा मन ना लो या खास से बिल्कुल सलाम दोबारा से दो ठोलू था।

0: सही अगे नमक से कॉल बने किसी से कॉल बने सो को देखिए हम जना दे 0927291292 बने अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला ठीक ठाक भला बांदेशा है बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदुल्ला प्रोग्राम हो और भी कना
1: भाई प्रोग्राम में अलविदा के ना प्रताव मूवी की तारीख भी कटाल वो तो
0: सही डेरा मनना नोम दे सही किम देने कॉल दिख रहा है
1: नादिया हबारी कम तख्ते नसरत
0: नादिया फ्रॉम तख्ते नसरतरी नादिया तो प्रोग्राम से हर के ले गई
1: डेरा मनना भाई
0: शाह प्रोग्राम और भी कना
1: जी भाई टाइम हो रहा है
0: बिल्कुल माशाल्लाह हर समय कड़ी दी तो से मतलब दर तो वैसे उस हो ईद तेर शो और अक्सर द डेर कोरोनो की दस वीक ना जे खैर गरीब रोन तक खबर की हो डेर खबर न की खपल जों तडेर अक्षर दवी फ्रिजी ना ने ढाक की और कना के बेदा सी कना छे मतलब दस तरोजे और नव की वचा की तो से हां वचा कड़ी दो कना बिल्कुल गुड जबरदस्त बिल्कुल बासा पचार दाग दू कना छे गोरंडी अदा से गरीब बनान बबी छेगा मतलब पल ईद नशी नहीं वाला है नो आगे सरा पदे वरसों की खसूसी मदद पचार रहे बिल्कुल दास दे जी ना दिया सब वाले प्रोग्राम के
1: भाई सलोमीना लगते हैं कि भाई तो कुछ हड़ा
0: ले दो हाँ बिल्कुल मोह हड़ा लिया दो हो दास दी कना छे बस मेघदार बने होल बचार भी डेरा ना जी जी डेरा मनना लो या खजर चाहे सलाम दुआ मिस जी बिल्कुल माजीगर बन इंशाल्लाह शो तक देश वरा सी ठीक
1: छा तारा हाँ तमी सलोम दा दिल रुबाह तक तमी सलोम दा आईना हा तक तमी सलोम दा
0: जी
1: अली नहा तक तमी सलोम दा तुम रहान दुनिया वो जोर थोड़े तमी सलोम दा
0: सही वालेकुम अस्सलाम डेर मनना थैंक यू कॉल के वाले
1: ओके
0: लाफे डेर मनना जी प्रोग्राम से कॉलो को यो जहान मनना हाँ जी ग्रेड मर के मैसेज करे अच्छा जी सही बिल्कुल शकील खान हाँ जी शकील खान हो बिल्कुल मने अच्छा जी वी आई कहना छे वेरी नाइस सम डेर में वह हंडल एंड का सॉन्ग दे प्ले न करता या बुखफा मो रिहान वजीर पवासी सॉन्ग सही दर ग्रेड में लेकर मैसेज करे जो कोशिश करूं हो बाहर की आवाज अंदर लेकर आऊं और दो सॉन्ग दे डेढ़ जबरदस्त सॉन्ग दे और डेढ़ बरस के बाद सॉन्ग जब ले गए अच्छा जी बिल्कुल वर्जी दे सॉन्ग पुत्रबाने प्रोग्राम से दगा सॉन्ग और भी और दो सॉन्ग दे लशीदा से स्लो टाइप था सेट शान दे सॉन्ग दे खोड़े जबरदस्त सॉन्ग दे शा

अच्छा जी, लिटिल मेश मैसेज करे दे मामो, फर्स्ट एसएमएस मैंने किया था, मैं तो आपसे इतनी डरती हूँ। वे ले ला दिखे रोगी, जब आप मेरे एसएमएस को रीड करते हो तो दिल का धड़कन जो है तेज हो जाता है। अच्छा डेरा मनाना, थैंक यू सो मच। आज हार्ट धड़क धड़क करती हैं। डेरा मनाना, थैंक यू, बिल्कुल मडर मैसेज कबल से। थैंक यू डेरा मनाना, तो प्रोग्राम से तो मैसेज होगा इंशाल्लाह। बल प्रोग्राम की उधर से रखी जी ब्याह मुलाकात तरह परे दो गानों की याद सत टूल डेज या तो बने ना शाम प्रोग्राम के शिरकत हो को शाम प्रोग्राम से कॉल मैसेज तो बने शिरकत हो को शाम प्रोग्राम हम शही सरोवर दो या दिन लवचा कल नौ लगे दो आगे हम डेरा मनाना के भी इंशाल्लाह बल प्रोग्राम की उधर से रखी जी ब्याह मुलाकात तरह परे दो गानों की याद सत। सो टेक केयर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात इस्लामी
1: द खुशाले खबर पुस्तासु पाखपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जुड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लोगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़न बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औखकार बीमारो पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवल इशे सूखची डी चिमिस बी चिमिस अल चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

Spell Refrigerators. सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से भी है modern, elegant and cool. और इसकी advanced technology बनाए इसे more efficient, spacious and eco-friendly. New Pell Refrigerator works as good as it looks.

खुश खबरी, खुश खबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म। मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तेल चिसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओस ओस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी نو اغا سڑای چی سو رج شفا تل پا پل سر بانے مالش کی نو دادا بسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی شفا تل وشتان غرزول بندوی ویختان گن او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دوارو دا پارا برابر پیدا مند مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبرو رابطہ کولے شی 031-397-3636

0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: द करक अनूर शो को अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगीदल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पर शमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह आचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

0: ये है रेडियो अमन आपके दिल की आवाज।
1: ये है रेडियो अमन आपके दिल की आवाज। ये है रेडियो अमन आपके दिल की आवाज़।

प्रोग्राम तारु छई प्रोग्राम तारु ता मैसेज वाके ये मैसेज नाम बार देता वा शाया आज के पास ती कई नाम बार ये दा देर ग्रुन ना दा पदलश की दा गुजिना वरता बाबर के गुजिनर नर दे के तरीका इस दा के फागे तरीके मुता मैसेज वाके काल नंबर हदरता वशाया मैसेज तरीके कार दादा है राइट मैसेज चालू से वली के आर ए के स्पेस वेर के खपला खाबरा की साल लतीफा टापा गजाल शेर शाहिद खान ओबिया वेर सेंड के पहुता पिंजा होता दरे बंदे पंजासी त्रियासी चौवासी इक्यासी तेरे पर लुटे शाहिद खान यानी पंजासी त्रियासी बंदे वेर सेंड के उत्ता पिंजा उत्ता दरे बंदे शलाय वंदे मैसेजर वाला जा रंगीन वंदे मैसेजर वाला जा जलपे वेर जुड़े के स्तर के तला कई वेर जुड़े के ओ भी रिसेंट के ओ बल्ल दे टेलीपिंस मेरा उधर ता आवश आया आला दे पत्तोरा त्यारशे नस्कुर खुमा का नस्कुर से रटो खुश है नो टेलीफोन नंबर दे जी 0927 291 200

ताड़ी वाई है, ताड़ी वाई है। ऐसा पेड़ टका वाई, शाबाश है, सापड़े वाई है। हाँ।

शुक्रं विरोननायम् ओ यर्मे साधदे पहुजरो वै हलोना ओ कस्क बजर से हर ओ हो ममस्त बजवने आखिर